0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6 शुक्ला गंडकी टाइम चेक
1: यति बेला बिहानको ठिक 11 बज्यो।

0: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 MHz।
1: जो हम चौथी कक्षा में पढ़ते थे वो याद दिला देता हूँ, ये हम हैं और ये चांद यहाँ है और ये जो मार्स है ये यहाँ इतनी दूर।
2: सर हम मार्स जा सकते हैं।

0: फ्रेंड्स, रात का खाना अगर बच जाए तो सुबह तड़का लगा के नाश्ते में दे दो।
1: फाइव इस आप होम साइंस और रॉकेट साइंस, इससे कोई फर्क नजर नहीं आता।
2: चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम पूरा।
3: गो गो गो।

0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: शुक्ला गंडकी टाइम चेक
2: यति बेला साँझको ठिक 6 बज्यो।

नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज मिति विक्रम सम्म 2083 साल साउन महिनाको 12 गते मंगलबार, असार शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। अंग्रेजी मिति अनुसार जुलाई 28 तारीक सन् 2026। नेपाल सम्म 1146। सूर्यदेव बिहान 5:25 भए पनि सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। बिहान शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। समाचार कक्षबाट मरिमा शुक्ला गण्डकी समाचार शुरू गरौं। यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट।